0: भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना

सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

काछी ने तक नहीं रचामुंग तबक नहीं रचामुंग तुम भी वही हो नकारी तुम भी हो वही करंग रखा विशाल दर्दलनी ताई सूरज जगन

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपट

0: रोकने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
14: नमस्कार सर। नमस्कार।
15: नमस्कार सर।
13: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
14: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स

0: मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया. जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ. एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले. तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर. एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है. एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली.
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ. अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है. और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ. मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं. तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था. मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है. तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी, मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया. तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है. वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ. तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे. तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा. तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो. तो मैं कहा भी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे, भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है. तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है.
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो.
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर. फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी. उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा. तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा. तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे. तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं. और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है. तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है. तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर.
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना. और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया. तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है.
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो. जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते. तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा. तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता.
1: अनिमेश जी.
0: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं. तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही. मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं. तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे

0: आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं,

भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे

जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य

की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन

बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय

0: गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: এতক্ষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সঙ্গে তার মনের কথা ভাগ করে নিলেন। অনুষ্ঠানটি দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হল। আকাশবাণী আগরতলা, আমাদের অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে আকাশবাণী আগরতলা, আকাশবাণী বিলোনিয়া, আকাশবাণী কৈলাসহর, FM উজ্জয়ন্ত এবং রাজ্যের সবকটি রিলে কেন্দ্র থেকে। এখন শুনবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের বাংলা ও ককবরক রূপান্তর।
3: আমার প্রিয় দেশবাসী নমস্কার। মন কি বাতে আবারও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের দেশের মানুষ দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে এমন অসাধারণ সব কাজ করছেন এবং যখন তাদের সম্পর্কে শুনি তখন আমরা নতুন প্রেরণা পাই। আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা আমি অ্যাথলেটিক্সে দেশেরই তেমন এক কৃতিত্বের কথা দিয়ে করব। কয়েকদিন আগেই ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ন্যাশনাল সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সারা দেশ থেকে প্রায় 800 অ্যাথলিট অংশ নিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন 4টি ভিন্ন ভিন্ন ইভেন্টে 4টি জাতীয় রেকর্ড ভাঙা হয়েছে। ভেঙেছেন গুরিন্দর বীর সিং, বিশাল টিকে, তেজস্বিন শঙ্কর, দেব মিনা এবং কুলদীপ কুমার। ওই সাথীরা আলাদা আলাদা ক্যাটাগরিতে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। আমি সর্বপ্রথম এদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। সাথেই একটি ইভেন্টে যা নিয়ে সারা দেশ খুব আলোচনা হচ্ছে সেটি হল 100 মিটার রেস, 100 মিটারের

0: हागु बहायनो थोंमुंबाय गोदालजाक तंमानि सिनि भारत हुकुमुनि रायजा कायसा तंगो जेफ्रु जेसबतेर ओंखे रमदि दिवाली हायाखे बिसिकताल ओ जराव जों सिनि नक्सानक आरि साफसुत्रा खालायो आंखे बाबुनि ट्रफी ताय बिनि मेडेल रग्न साफसुत्रा खालायो ओ सामुं तांगै आं बेलाय खेनो खाकचांमा मानो ताय आनि बखानो बेलाय खेनो तंथग्रुओ जेफ्रु आं जेसब कायसा ट्रफी न साफ सुथरा खालायो आफ्रो आं बाबुनो सोङो बाबु नों ओ ट्रफि बर' जिदिखा ओ मेडेल बर'मान ओ मांगप्लि बर' तिसामानि आफ्रु ब बिनि कथमारग्न आनो साय खोनारो आं ओ माहाय जागाव थोंना थांमानि हायाखे आं ओ नेशनेल मेडेल अर जिदिखा हायाखेबा आं ओ इभेन्ट बदलनि कप्लाय तिफां ओंखा ओ क खोनावै आं बाबुनो साखा आंबो थोंमुंनो हामजागौ ताय थोंमानि बिसिंतै बायथांनि याकुङ बासाना मुसुगो बाबु सालब्रुम फुङो खासिंना थाङो आं बनो कयखा बिनि लगि तैनानि बागै ब आन ब बायबाक्सा लांना सेंखा ताय बिनि थोंमुंनि लांमाव जे सोरोंमानि स्किल रग्न आन फोरोंना सेंखा आबो हायखेनो थोंमुंनि फायसिं आनि खा वार मुं तैबो बासावै फायखा आं उसेन बल्टनि वर्ल्ड रेकर्ड ब नुखा अबबाय कायसा गोरोंजाक बेलाय मोनै कथ कथमाब तङ आं टिभि नायै तंफ्रु आफ्रु आमा टिभि मोथागै सावो ताबुक परिना जरासे परिनानै थांदि आं आफ्रु सावो द हायखे आनो टिभि नायना रिया आमाहाय सालसा जराफायानो आफ्रु नों आनो टिभि बिसिङन नायतुगानो ताय आनि फायसिं यासि सुरै सावानो इक नासिकदि बरिन्दर खासिगै तंखा जेफ्रु आमा टिभिव आनो खासिगमानि नखा आफ्रु गब्बुनो आनि खाव खाकचांमा मानखा
1: बा बेलै खोनाथक निनि कथमा
0: आव गबुनो सार जों कायसा मिडल क्लास नुखुंनि बरक आबनो कारिब आनि बाबु ब ब जरा कायसाव भलिबल थोंमानि फिया नुखुंनि केबेंमुं बाय बिनि अ थोंमुंनो याकारि मारखा बिनि अ इमां इमां न तंग्रगै थांखा बिनि आ इमांनि मांप्लि आनि बिसिङन नुगदानि सेंखा ओ वानसुक मुंबाय आनि साजला सालसा ओ इमांन मुख थां खालायनाय हिनै आं बाबुबाय जरा मानखे गोबां मानो कक सालायो ताय मिल्खा सिं बसुक साखथारै लय खेलाय आ कथमारक आं खाबाय खेनावो आं बाबुनो सावो सालसा आंबो निनि इमांन मुख थां खालायनाय हिनै बाबु बिनि किफिल मुंग सावो इमांतो हायन्य मुख थां इया अबनि बागै नांगौ बेलाय गथुक साखथार मुं गोनां लय नों ओ लयन जायतगैत लांना नांनाय मिल्खा सिंजि बेलाय साखथारि लय खालायमा बाय थैब गोबाना नांखा ताय ब बेलाय सातं गोप्राब खासिगौ ब साफुंन ट्रेनिं खालायो ओ कथमा ताय अ कक मुंरक आन बेलाय खाबासा रखा आनि बाबु आन खासिगनानि बागै बेलाय खाबासा रखा हाखतरनि बागै खासिगना बागै मेडेल मानना बागै ताय बसंनि बरमनो तुबुना बागै बिनि अ बाबैसा ब दङ जेफ्रु आं इभेन्ट 100 मिटार स्प्रिन्ट सायैनो हारखा आफ्रु जत्न आन साखा 100 मिटार ता खासिगदि हिनै अबसिनि भारतीय रगनि बागै चुगजाग इभेन्टया भारतनि लुकरगनि तरमा लगमाबाय 100 मिटार स्प्रिन्टनि बागै चुगलाग फिया आनि बाबु ताय आं जत जरावन सावो गुरिन्दर जेफ्रु आबन सायैनो हारखा आरनि सिमित उक्लुक उस्लुनानि ककनो कासाया जे रग सावो आबो जों मानग्ला खनै आबनो आं खालाय फनुगना मुसुङो आबनो आं खालायि फनुगनाय नों न अबो खालायि फनुग माननाय नन पुयतु तङ बाबु जेफ्रु आन अ कक पुयतु कुप्लुंनि कक सावो आफ्रु आं अ पुयतुनि फान्न बोसकाङो सोकांग्रुवै त्लांनानि जेंखा तै दिनि आं कुंसुगै भारतनि जत लुकरगनो साना मुसुङो भारत हानि लुकरग ब स्प्रिन्ट खासिगि मानो
1: नायदिनर खरंनै गबैनो वानामा सिंसा कायसा सामं खालाय फुनुका सालनैनि बिसिंगन नरक नेशनल रेकर्ड सबायखा वाइथम 100 मिटार खासिं मुंग पार्टिसिपेट खालायमा तैनाय गुरिन्दर बीर जे कक रत्न खुरसाखा जे जागा गोबांमा बरकन सावै दङ भारतनि लुकरकनि साखमांबाय अथमुंग चुगिया होनै अमाहाय गोबांमा केबेंमुंनि बिसिंगै फानो नरक अ वानामा सिंसा सामुंन खालायफुनुका অবনি

0: अग्नि आंग नरक खरकनी थानी खनाना नायो ते मन की बात खनाय तंगनाय रखनोबो सायमाना मुसुंनाय नरकनी खावो वानसुकमुं बाहाय तंगमानी नरकनी खाखामा ताय नरकनी गोथार सोबाय बाहाय तंगमानी नरक बाहायके अनाहार मुंनो मुगथां खालाय मानखा साना थांके असामुं बसुक जराती कुतुक तंगमानी
1: आव सार आं गुरिंदर बीर सावै दङ जेंमा जराव गोबां मा स्ट्रागल खालायखा सार गोबां मा खाबो मिथिखा नोंसय सामुंदा खालाय दं होनै आं साय नामानि सयदा ओंखा होनै तामनि होनबा जत जरावनो नों गोप्लाय इंगा वाइसुइसु नों सोरोंमुंबो मानो जेफोर आं सेंखा जेफोर आंनि पारफरमेन्स आंनि गाहाम इंगा खायाखे जेफोर आं इन्जुरि ओंखा आनी नुखुं जत जरावनो आनी लगिव तंखा तै आनो खाबासार खा बरक साओ आबो मुंसाया सालसा हामिया ओंमाबाय हायाखेबा बिसा हामिया ओंमाबाय आबोनि ककमां अबया निनि जत लांमानो पाइ थांगा नोंनिनि इमां नुगनानो ता मथाकदि आनी कुचबो आनो अ फोरोंमुंनो रखा नों तुमुं बायथां सोकाङै फाइयाखे निनि बागै केबो अ सामुंनो खालायि मानिया आबोनि बागैनो जेफोर सिनि दफा सिनि बारा बा सिंनि लुकरक अबाहायखे सोंनो खा बासारव तै सिनि बोखानो गोरा खालायि दिसाव आफ्रो सिनि खा बासामुं बायि थांगिया
0: अनिमेश जि
1: सार 2021 बिसिव जेफ्रो आं एथलेटिक्स याप्रि सेका आफ्रो जतन आनो साखा नायदे अब कायसा कताल लामा अबनो नों सामल' गैदा मानो आबोनि किफिल मुङो आं साखा ताबुक आं अ लामो याप्रि बारगै पाइखा आबोनि बागै तं हालक जेसाफानो ओंथों आं बिनि पाइथाक नायनो याकारनाय आनि बाबुबो आनो जत जरावनो साव नों अ संसार याखुं बारखा तै आरिनि सिमि वाइसाफानो उकलक फिरगै ता नासिगदि साना थांखे जतन अब आबया अबहायकक साव तै वानसुगु फिया किसासक बरगनो मुख थाङो थोंखलाव अंखरै अबनो खोलायि फनुगु ताबुक नों अ थोंखलाव नंखरैसे हायाखेबा आबोनि फाइसिं खारिउ दंदि तै बोसकां फाइसिं सिगाङै थांदि जों नुखुंनि जत लुकरक नन जत फाइसिंतै जेसेक मानसाक जबावै दंनाय अब खा बायफानो ओंथों एबा रां पैसा बाय फानफानो ओंथों जत पजा जोंनो हरनाय नों खारुवै सिमि थोंदि तै भारतनो फुनुगै रोदि भारतनि लुकरक बो खासिगि मानो लुकरक आनो तै बुइनोबो साव भारतनि लुकरकनि सागमां अमाहैया जे बरक 10 सेकेन्डनि साय किसा जरानि स्प्रिन्ट खासिगि मानानो फिया ताबुकजों खरगनै फुनुगै रेखा भारतनि लुकरक बो अबनो खालायि मानो अबसिनि थानि मानिया सामुंया जों जे साबो एसिभ खालायि मानानि फान दङ आबोनि बागैनो सार अ कक्रक आनो बेलाय खेन' खा बासारव जों जेफोर सिनि ट्रेनिं खालायि दंमा जराव आ जराव सालब्रुनो जों सिनि बायथांनि रेकर्डन सोबायो तै गुबुन भारतनि लुकरकनि थानिबो स्राय स्राय ओङै कासाका बरकबो नायखे अमाहाय जेसाब मेडेलनो एसिभ खालायि मानो सार जों थिनाङ तेबो कतर मान मुंनो मानना नाहारै सोकाङै थांना मोसङो साना थांखे जों खरगनै ताबुक कमनवेल्थ गेम्सनि बागै सिलेक्सन ओंखा तै बोसकांनि कम्पिटिसनो तैबो गाहाम पारफरमेन्स खालायना बागै कग्रुवो
0: वाव खोनादि आनिबो कायसा सोंमुं दङ तै आनी वान सुमुं गुबुननि खावबो अमाहायनो सोंमुं आसै खोना आं खोनामानि नरक खरगनै बेलायनो किचिं गाहाम नरक खरगनैनि बिसिं मुंसासोग सोमाय तांजाकदा दं खरगसा रेकर्ड खालायखे ते खरगसा अ रेकर्डनो सोबायनाय होनै अनिमेश नोंनो पुलास साला
1: सार सोकांनि रेकर्ड 10.18 सेकेन्ड रेकर्ड आनिनो दंमानि आबोनि यागुलो सेमिफाइनाल खासिक मुङो ताखु गुरिंदर बीर 10.17 सेकेन्डनि जरा बाय आ रेकर्डनो सोबायो आबोनि यागुलो उलनै सेमिफाइनालो आं तेवाइसा आ रेकर्ड बो सोबायो आ जराव आं जरानाखा 10.15 सेकेन्ड आ जराव सेमिफाइनाल खासिगै पाइमानि यागुलो सिनि खरग नैनिनो बेलाय खातुं खाजा ओंखा तामनि होनबा जों आब' खालाय

बैनो चबानी बगे गबांमा रंग पैसा नांगा नांगो कैसा खा बै सकथार मूंग तारवई चायतमूंग अवान सूम रक्न तयी खरकसा बरक सै सै लुकरंग लाख मानो सलाई मानो आने खापांगनी हाकतनी लुकरक थांनाय केसासुक सालो आं यूरोपनी नेदारलेनो बेरायनानी सेब मानखा आं गबांमा मीटिंगो मानजाखा आं बेरायमानी जराव अमहाय कायसा जरा सकफायखा अब भारतनी जतो लुकरकनो खा बासारव नेदारलेनो संसारजा कायसा पान्डाव चुलमलनी गोसाम किसासो ताम्र रिपिनो भारतनी यागो याफारी रोजागो अ पान्डाव नेदारलेण्डनी मन्दिर बख्रबो टमानी अ ताम्र रिपिनो तयी हाकुतनि फाटा तै बिसिंग बाबानी थाइनी सिमिनो आं चयावै गोबांमा कक्तमा मानखा लुकरक बरकनी खातुमानी कक्नो साका तै बायथांनी कंचुमानी कक्नबो बलायखा हायुं गनाङै जुदा जुदा थायो तंनाय तामिल बसंनी लुकरकनि बिसिंगबो अ पाटिमुंनतै बेलायखनो खा बासाजाक तै तंथगलायजा किसिंसं अ ताम्र लिपिनतै लुकरकनि बिसिंग किसासुक सोंमुं आसायखा अबनि बागै आं तिनि अबबाय गोरोंजा किसासुक कखनो नरखनो सानानि मुसंग आरो कायनै चिसा कतर तै कायथाम चिकन तामानि तंला तंगो अब आलायदाखे बबगरा राजेन्द्र चोल पुइला बायबिनि बुफा बबागरा रास राजा चोलनि कायसा कखनो नारकनानि ककबाय गोरोंजाक जालायसं अ ताम्र लिपिनतै लुकरंनि बिसिंग किसासुक सोंमुं आसायखा आबनि बागै आं तिनि अबबाय गोरोंजाक किसासुक कखनो नरखनो सानानि मोसंग अर' कायनै चिसा कतर तै कायथाम चिकन तामानि हायखबा ताम्र लिपि तंग अब आलायदाखे बबागरा राजेन्द्र चोल पुइलाबाय बिनि बुफा बबागरा राजा राजा चोलनि कायसा कखनो नारगनानि ककबाय गोरोंजाक आरो एनि मंगलम कामिव कायसा बुद्ध बिहार याफारमानि कक खुरसाजाक दङ अ ताम्र लिपिव चोल बसंनि सुखसामुंनि ककबो साजाकमानि नुगौ अबबाय सायमानो चोल बसंनि हालकनि तमंबो अबनि बिसिंतै सायमानो चोल बसंनि खनमपुइ लाइबुमा तै हुकुमनो तैजों जतन कुंसुगो चालायसं चिनि हापां भारतनि अबतै सरसाथाय गोरै मानैनो खाथि नारोखना बागै थाबख्लायखे सामुं तांगै तंग अबिसिंगन ज्ञान भारतन अभियाननि बिसिंतै छत्तीसगढ़नि मालहारबो कायसा नांकुक मानि कखथुम मानखा आरो कायथाम मानथग्या ताम्र लिपि मानखा अब पान्डव बसंनि राज बसंनि महर्षि बालार्जुननि नायकलमुं जराबाय गोदालजा खनै खाख्लायजागौ सिकरंग्रक खाख्लायु इन्सपिरेसन बादक रा बिसिनि एबा चिब्रिरा एबा चिबा रा बिसिनि गोसाम ताम्र लिपि गोसाम ब्राह्मीण आयखरताय पालि ककबाय सिजाक आरो आ जरानि हाफां तैदुलमा तंमुं तंथार तै हुकुमु रक्न तै बेलाय नांमानि सिमुं मानो जालायसं जों भारतनि बरकनि नखायुं सिकरों एबा एस्ट्रोनमी नतै जुदा जुदा खे सतनमानि तंग चिनि हाक्तर ताबुकबो बेलाय गोसाम अबजार्भेसन खाथिजाक तंग आरो वानामा सिंसा मेथमेटिकेल

डिस्कवरीज ओंखा नेविगेशन फानोंथों कायबा एलम ओंथों एबाखे चिनी टेरक अबजतनो नखाताय आथुकिरी रग बाय करंजाक चिनी आरो एस्ट्रोनॉमीर रग जत्तो पिरिनोनो खातिमुंनि आसाय रेखा बरकनो एक्सप्लोरेशन नि बागै खा बासा रेखा ताय ताबुंनि सिख्ला रगनि बिसंगबो अबतै बेलाय खातुंमानि नुगजाखा इ जरव नरगबो नुखना हाक्टर गनांगै एस्ट्रोनॉमी क्लाब नो लुकरग खातुंजाकमानि बाङै नो तंखा कतर आउलेनि सिमि चिकन कामी जरा रंगनकनि सिमि चेंगै गांथिनक जरा अबनतै हिमानि नुगजागै तंगो आं बेंगालुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी नि कखनो खनाका आरो अब्जर्वेशनल सेशन संसा जागो अमथा कामी आमसायो एस्ट्रोनॉमिनो लुकु खातुंग्रोमानि बागै सामुंतांगै तंगो कंगोल मंडल मंगोय कायसा बदल दाम थामचिनि कायसा बेलाय खाबा जाजांनाय कोर्स चेंखा चालायसं आरो आथुकिरि जोंमानि अब बेलायनो जुदाकुक नुकमु एस्ट्रो केरला मुंगुई कायसा मथा नाइट अब्जर्वेशन केम ताय वार्कशप पान्दानो संसावो आरो सिख्ला चालायरो टेलिस्कोप सनामना ताय स्टार मेप बाहायके सामुंग थेपा अबनो गोरोंगो राजकोटनि बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लाब गिरनि बलंनि सिमि कार्ड्सनि हासिंखर जरा गोबांमा एस्ट्रोनॉमी पान्दा जुगालजाखा ज्योतिर्विद्या परिसंस्थाबो एस्ट्रोनॉमीनि जतनि कसा मथानि बिसिंग कायसा आरो अब्जर्वेशनल फेसिलिटीज बाय बाक्सा बिजाब बिजाबखर ताय टेलिस्कोप लाइब्रेरीनि सेबसाब दङ आं आई एस ए एस हिनो तैबो खुरसाना मुसुंगो अब कायसा स्टुडेन्ट लेट नेशन वाइड नेटवर्क बर' एस्ट्रोनॉमी ताय एस्ट्रोफिजिक्स क्लाबनि बिसिंग मानजुगो किसिंसं बायथांनि हबिनि बागै जरा तिखलायनानि ताय तामख्लाय एके गोताल सोरोंगै तंनानि बेलायनो नांगौ आं सिख्ला रक्न कयनानि मुसुंगो नरक जेसा एस्ट्रोनॉमी क्लाब बाय जेसा के फानो गोरों दि ताय अ लेंलामानि जराव जेसा प्लेनेटरियम बो थांगै जेसा के फानो नायदि किसिंसं मन की बात पान्दानो जे बर' रग टिभि नायो आं बरखनो सानाय कायसा भिडिअ जेसा के फानो नायदि अ भिडिअ न तै थानाय साल रग बेलाय खेनो सालायजाखा आरो किसासो बरक बेलाय खालगै बेलाय कायसमै गंगानि मासा डल्फिनो मोथांनानि साक्थालायखा नरक अकक खनाय मोलांसावानो आ साक्थारमु दामचिथाम नांखा पायथागो अ डल्फिन थाबो थांखा किसिंसं आरो जतनि कतर याकतर्मा ओंखा भारतनि पुइला गंगा डल्फिन रेस्क्यु एम्बुलेन्सनि अपातिमुं उत्तर प्रदेशनि आरो मासा गंगा डल्फिन झाबाराव कसायतंमानि अबति जराव खामा गंगा तांबोथांनि बिसिंतै अ सोनाम जाकमानि अ एम्बुलेन्सनि बागै खाथारि जाखनाय ओङै कासाखा उल बेलाय कायसमै बन अ कबुलजाकनि कारिखा बिनि साग आमजों नायजाखा बिनि साग आमजों नायमानि यागुल बन तैलाम काहाम फियगै रहरखा बाबासा तै नायखांके कायसा लांमा तेहैसा बिनि नग किफि मांखा किसिंसं अ डल्फिन रेस्क्यु एम्बुलेन्स बेलायखेन नांमानि अम ओंखा हिमि तंनाय कायसा हस्पिटाल एबा साखामनक हायखे सोनामजाक अर अ डल्फिनो जायखे तनमाना तैखे सोनामजाक अक्सिजेननि सेबबो तंगो काहाम स्ट्रेचारबो तंगो नायखानि ख्लायजाखनाय मानैरगबो तंगो तुमुं डल्फिन

0: हिंके जिन खनालाइखा जिनी ताखु अरुण गतुई खै खरा खसंगबाय हादुक हापिंगो सङो कमारी तलांगमनि बिनी तेके सारु चामगो ताम कक थाइन खलांका नैलेयन हापानि सुलाय मुंगराइदा केबो बाय कासो जायखिया आव नगबार छिपमानि जरा सुलायमानि यागुलो बेबाकनो सुलाय जागु मतम बुबार बखरै कियोग्ररम फुरु बिनि बाहायनो खासिक नारलिया द आहा सासलांग नगबार कबर जेफुरुबनो कबल फायो आफुरु बुबार लाइसराब जायिंखे मुनुयै फुनुग बुबार करम करजाखे तैलिलुक बाहायबाय साबो साबोनो गुबुलै मोसाना कबखरु किदिंयालुलुक बुबाजै एबा बुसैनि खाजोबो थायो मोखां बमै हुइजाक तंमानि अक्यौरम सास्रक्सा फुरु हाखिमांदा ब मोखां बुबानो हुइ तनैमानो माया एबा ब खुम्बार नायदे फलकना नायनो बिनि मोनैमा नासिक मुंनो जाय सिख्ला सास्रक्सा ब चुक सर सर नक रायदा खाजुओ खुम मतम बिसिं तुईदे नकनी दगलामनी या पिरी बारन
1: सबन लाची वे यास सबन लाची वे यास

0: বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। কাঁঠাল গাছে এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণের ফলে কাঁঠালের মুচি কালো হয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে। সেক্ষেত্রে এক লিটার জলে 2 গ্রাম ডাইথেন M45 বা 4 গ্রাম ব্লাইটক্স গুলে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।
1: চাষের কথা শুনলেন, আজকের প্রসঙ্গ ছিল কাঁঠাল চাষ। আকাশবাণী আগরতলা, এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्रपट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
2: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा।

0: दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज
2: আকাশবাণী আগরতলা। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 236.4 মিটারে, অর্থাৎ 1269 কিলোহার্টজে। এখন শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান অঙ্গনা। অঙ্গনায় আজ বয়ঃসন্ধিকাল, জীবনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি সময়, এ নিয়ে বলছেন অনামিকা রায়। শুরু হচ্ছে অনুষ্ঠান অঙ্গনা।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

0: ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी

0: मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
5: नेवी, एयरफोर्स,
6: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और

0: चार
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী আগরতলা, শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন। এই অধিবেশন আপনারা শুনতে পাবেন আকাশবাণী আগরতলা ও নিউজ অন ইআইআরএ। ফেসবুক ও ইউটিউবে আকাশবাণী আগরতলার পেজেও শুনতে পারেন লাইভ অনুষ্ঠান আকাশবাণী আগরতলা। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে রিলে করে প্রথমে ইংরেজি সংবাদ এবং পরে হিন্দি সংবাদ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है।

0: हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमरीका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि

0: ऐतिहासिक रूप से रेड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अगरतला एखन सुनबेन अनुष्ठान कल्याणी।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, सकलके शुभेच्छा जानिए शुरू करछि आजकेर कल्याणी। आजकेर कल्याणीते आमरा मूलत कथा बोलबो শীতকালে নারীদের অসুখ বিসুখ এ বিষয়টি নিয়ে, এবং যিনি কথা বলবেন অর্থাৎ স্টুডিওতে আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন ডক্টর শঙ্কর আচার্য, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। আপনাকে স্বাগত জানাই স্যার।
3: হ্যাঁ নমস্কার।
2: আপনাকে আমার যে প্রথম প্রশ্নটা তা হলো, শীতকালে এত অসুখ বিসুখ হওয়ার কারণটা কি?
3: এত শীতকালে অসুখ বিসুখ হওয়ার একটাই কারণ, টেম্পারেচার চেঞ্জ হতে থাকে। অন্য সময় আর্দ্রতা থাকে, আর্দ্রতা থেকে কমতে কমতে শুষ্কতার পরিমাণ বেশি বেড়ে যায়। তো যখন পরিবেশে শুষ্কতার পরিমাণ বাড়ে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আমাদের পরিবেশের মধ্যে জন্ম হতে থাকে এবং ওদের বৃদ্ধি হতে থাকে, সেগুলো আমাদেরকে কাবু করতে পারে। পাশাপাশি এই ঠান্ডার জন্য আরও অন্যান্য রোগ হতে পারে, কারণ কি এই সময়টায় আমরা ঠান্ডার জন্য অনেকে জল কম খাই। তারপরে আমাদের স্পেশালি মহিলা যারা আছে, ওরা সবসময় জল নিয়ে ঘাটাঘাটি করে। জল নিয়ে ঘাটাঘাটি করার পরে জল শুকানোর সময় পায় না, সঙ্গে ঠান্ডা, এই সবগুলো মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্সিটি তৈরি হয় এবং এর জন্যই বিভিন্ন রোগ ব্যাধি তৈরি হয়। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক সিজনেই রোগ হয়, তো শীতের রোগের ভ্যারাইটি আলাদা, গরমের রোগের ভ্যারাইটি আলাদা।
2: বুঝতে পেরেছি, মানে প্রতিটা সিজন অনুযায়ী এক একটা কারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। আচ্ছা, তো শীতকালে মহিলাদের মধ্যে মানে কি কি অসুখ বিসুখ হতে পারে?
3: এটা বেসিক্যালি মহিলা নয়, সবার জন্য যদি বলি, কমন যদি আমি বলতে পারি তাহলে জ্বর, সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, জল বসন্ত, মাম্পস, পেটের অসুখ। স্পেশালি মহিলাদের যদি বলতে যাই, এখানে লিউকোরিয়া, হোয়াইট ডিসচার্জ, এই রোগটাও কিন্তু এই সময়টায় বেশি হয়, কারণ জল কম খাওয়ার জন্য। তো এই যে অসুখ বিসুখগুলো আছে, সেই অসুখ বিসুখগুলোর মধ্যে আমি যদি একটু ছোট করে ডেসক্রিপশন দিই তাহলে ভালো হবে, সবাই শুনতে সবার বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন ধরেন ভাইরাল ফিভার, এই ভাইরাল ফিভারটা কি কেন হয়? ভাইরাল ফিভার হওয়ার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভাইরাস। এখানে আছে

0: आं 200 मिटार तै 400 मिटार कायनो नेशनल रेकर्ड सनामखा तै आनी नक छत्तीसगढ़ सार ताबुक आं जुदा जुदा थंगमुंगनि बाटायमुङो उड़ीसा हास्तिनि इंगै थंगै दङ थांनाय बिसिओ आं एसियान गेम्स तै वर्ल्ड इउनिवर्सिटी गेम कायनो मेडेल एबा सकाट मानखा 2021 बिसिओ स्कूलनि सिमि ग्रेजुएशन पाइमानि उलनो आं एथलेटिक्स हाफारो आनी यापरि बारक मुंसेंगो आं अम्बिकापुर सैनिक रोंनकनि गोजाम सोरोंनाय दंमानि आबुनि साय सिगां आं फुटबल थोंमानि कोविड 19 कप्रब मुंनि जरा आनी माफासं आनो किसा जरा रोमाबाय आं आ जराव' खासिगनानि तै थोंनानि बागै फाटार' ओंखारो कोविडनि कप्रब मुं जेफ्रु किसा हलिखा आफ्रु फुटबल टीमनि आनी किसिंसं आनो साखा हास्तिओ एथलेटिक्सनि स्टेट मीट ओंनाय नों आरो पार्टिसिपेट खालायदि तै आंबो पार्टिसिपेट खालायखा तै आं सायमानिया आबो नेशनल लेवेल सिलेक्शन नै आं आरो सिमिनो नेशनेलनि बागै सिलेक्ट ओङो तै ताबुक आं हायुं गोनाङै भारत हाखतनि ओङै रिप्रेजेन्ट खालाय दङ
1: तै गुरिन्दर बीर निनि कक्ष बाहाय
0: खुलुमखा सार आनि मुं गुरिन्दर बीर तै आं खरक्सा इन्डिया नेभिनि पेटी अफिसार तै आं भारत हानि जतनि सिलाय कद स्प्रिन्टार आं 100 मिटारो 10.09 बाय नेशनल रेकर्ड सिनामखा भारतआव आंनो पुलिया 10.1 सेकेन्डनि कासुजाकनो लायोमानो तै आं सायतगै दङ ट्रेक तै आनी सेंक्राकनि खाकि अ कायनै न हा आमानि बागै याफारजाक आनी बाबुतै थागुबहायनो थोंमुंबाय गोदालजाक दंमानि सिनि भारत हुकुमनि रायजा कायसा दङ जेफ्रु जेसब तेर ओंखे रमदि दिवालि हायाखे बिसिकताल अ जराव जों सिनि नक्सा नक आरि साफसुत्रा खालायो आंखे बाबुनि ट्रफि तै बिनि मेडेल रग्न साफसुत्रा खालायो अ सामुं ताङै आं बेलाय खेन' खाकजांमा मानो तै आनी बोखानो बेलाय खेन' तंथग्रुवो जेफ्रु आं जेसब कायसा ट्रफिन' साफसुत्रा खालायो आफ्रु आं बाबुनो सोङो बाबु नों अ ट्रफि बर' जिदिखा ओ मेडेल बरमान ओ मांगप्ली बर' तिसामानि आफ्रु ब बिनि कथमारग्न आनो सायखोनारो आं ओ माहाय जागाव थोंनो थांमानि हायाखे आं ओ नेशनल मेडेल अर जिदिखा हायाखेबा आं ओ इभेन्ट' बदलनि कोप्लाय तैफां ओंखा अ कखोनावै आं बाबुनो साखा आंबो थोंमुंनो हामजागौ तै थोंमानि बिसिंतै बायथांनि याखुङो बासाना मुसुङो बाबु सालब्रुमो फुङो खासिगना थाङो आं बनो कयखा बिनि लगि तैनानि बागै ब आनो ब बायबाक्सा लांना सेंखा तै बिनि थोंमुंनि लांमाव जे सोरोंमानि स्किल रग्न आनो फोरोंना सेंखा आबो हायखेन' थोंमुंनि फायसिं आनि खा वार मुं तैबो बासावै फायखा आं उसेन बल्टनि वर्ल्ड रेकर्ड ब नखा अबबाय कायसा गोरोंजाक बेलाय मोनै कथ' कथमाबो दङ आं टिभि नायै दंफ्रु आफ्रु आमा टिभि मोथागै सावो ताबुक परिना जरासे परिनानै थांदि आं आफ्रु सावो द हायखे आनो टिभि नायना रिया आमाहाय सालसा जराफायानो आफ्रु नों आनो टिभि बिसिङन नायतुगानो तै आनि फायसिं यासि सुरै सावानो इक' नासिकदि बुरिन्दर खासिगै दंखा जेफ्रु आमा टिभिव आनो खासिगमानि नखा आफ्रु गब्बैन आनि खाव खाकजोंमा मानखा
1: बा बेलाय खोनाथक निनि कथमा
0: आव कबुनो सार जों कायसा मिडल क्लास नुखुंनि बरक आबनो कारिब आनि बाबुब ब ब जरा कायसाव भलिबल थोंमानि फिया नुखुंनि केबेंमुं बाय बिनि अ थोंमुंनो याकारि मारखा बिनि अ इमां इमांनो तंग्रोगै थांखा बिनि आ इमांनि मांप्लि आनि बिसिङन नुगनानि सेंखा अ वानसुक मुंबाय आनि साजला सालसा अ इमांनो मुगथां खालायनाय होनै आं बाबुबाय जरामानखे गोबां मानो कक सालायो तै मिल्खा सिं बसुक साकथारै लय खेलाय आ कथमारक आं खाबाय खोनावो आं बाबुनो सावो सालसा आंबो निनि इमांनो मुगथां खालायनाय होनै बाबु बिनि किफिल मुंग' सावो इमांत' हायन' मुगथां इया अबनि बागै नांग' बेलाय गथुक साकथार मुं गोनां लय नों अ लयन' जायतगै लांना नांनाय मिल्खा सिंजि बेलाय साकथारै लय खालायमा बाय थैब' गोबाना नांखा तै ब बेलाय सातं गोब्राब' खासिग' ब साफुंन' ट्रेनिं खालायो अ कथमा तै अ कक मुंरक

0: आनो बेलाय खा बासा रखा आनी बाबू आनो खासिगनानि बागै बेलाय खा बासा रखा हाकतरनि बागै खासिगना बागै मेडेल मानना बागै ताइ बसंनि बरमनो तुबुना बागै बिनि ओ बाबैसा ब दङ जेफ्रु आं इभेन्ट 100 मिटार स्प्रिन्ट सायिनि हारखा आफ्रु जतन आनो साखा 100 मिटार ता खासिगदि हनै अबचिनि भारतीय रगनि बागै चुकजाक इभेन्टिया भारतनि लुकरगनि तर्मा लगमा बाय 100 मिटार स्प्रिन्टनि बागै चुकलाग फिया आनि बाबु ताइ आं जत जरावनो साव गुरिन्दर जेफ्रु आबनो सायिनि हारखा आरोनि सिमित उक्लुक उस्लुनानि ककनो कासाया जे रग साव आबो चों मानग्लाख नै आबनोनो आं खलाय फनुगना मुचुङो आबनो आं खलायि फनुगनाय नोंनो अबो खलायि फनुग माननाय ननो पुइतु दङ बाबु जेफ्रु आनो अ कक पुइतु कुप्लुंनि कक साव आफ्रु आं अ पुइतुनि फान्न बोसकाङो सोकांग्रुवै त्लांनानि चेंखा तै दिनि आं कुं चुगै भारतनि जत लुकरगनो सानामो चङो भारत हानि लुकरगबो स्प्रिन्ट खासिगि मानो
1: नायदिनर खरंनै कबैनो वानामा सिंसा कासे सामं खालाय फुनुका सालनि बिसिंगन नरग नेशनल रेकर्ड सबायखा वाइथम 100 मिटार खासि मुंग पार्टिसिपेट खालायमा दैनाय गुरिन्दर बीर जे कक रत्न खुरसाखा जे जागा गोबांमा बरकन सावै दङ भारतनि लुकरकनि साकमांबाय अथुमुंग चुगिया होनै अमाहाय गोबांमा केबेंमुंनि बिसिंगै फानो नरक अ वानामा सिंसा सामुंन खलायफनुका अबनि बागैन आं नरक खरकनि थानि खोनाना नायो तै मन की बात खोनाय तंनाय रखनोबो सायमाना मुसुंनाय नरकनि खाव वानसुकमुं बाहाय तंमानि नरकनि खाखामा तै नरकनि गोथार सोबाय बाहाय तंमानि नरक बाहायखे अनाहार मुंन मुगथां खालाय मानखा साना थांखे असामुं बोसोग जराती कुतुक तंमानि
0: आव सार आं गुरिन्दर बीर सावै दङ सेंमा जराव गोबांमा स्ट्रागल खालायखा सार गोबांमा खाबो मिथिखा नों सय सामुंदा खालाय दं होनै आं सायनामानि सयदा ओंखा होनै तामनि होनबा जत जरावनो नों गोप्लाय इंगा वाइसु उइसु नों सोरोंमुंबो मानो जेफ्रु आं सेंखा जेफ्रु आंनि पारफरमेन्स आंनि गाहाम इंगा खायाखे जेफ्रु आं इन्जुरि ओंखा आंनि नुखुं जत जरावनो आंनि लगिव तंखा तै आनो खा बासा रखा बरक साव आबो मुंसाया सालसा हामिया ओंमाबाय हायाखेबा बिसा हामिया ओंमाबाय आबोनि ककमां अबया निनि जत लांमानो पायि थांखा नोंनिनि इमां नुगनानो ता मोथाकदि आनि कुचब आनो अ फोरोंमुंन रखा नों तुमुं बायथां सोकाङै फायियाखे निनि बागै केब अ सामुनो खालायि मानिया आबोनि बागैन जेफोरो सिनि दफा सिनि बाराबासिंनि लुकरक अबाहायखे सोंन खा बासारो तै सिनि बोखानो ग्राक खालायि दिसाव आफ्रो सिनि खा बासामुं बायि थांगिया
1: अनिमेस जि
0: सार 2021 बिसिव जेफ्रु आं एथलेटिक्स याप्रि सेखा आफ्रो जतन आनो साखा नायदे अब कायसा कताल लामा अबनो नों सामलो गैदा मानो आबोनि किफिल मुङो आं साखा ताबुक आं अ लामो याप्रि बारगै पाइखा आबोनि बागै तं हालक जेसाफानो ओंथों आं बिनि पाइथाक नायनो याकारनाय आनि बाबुबो आनो जत जरावनो साव नों अ संसार याखुं बारखा तै आरिनि सिमि वाइसाफानो उकलक फिरगै ता नासिगदि साना थांखे जतन अब आबया अबहायकक साव तै वानसुगु फिया किसासक बरग्न मुख थाङो थोंखलाव अंखरै अबनो खोलायि फनुगो ताबुक नों अ थोंखलाव नंखरैसे हायाखेबा आबोनि फाइसिं खारिवै दंदि तै बोसकां फाइसिं सिगाङै थांदि जों नुखुंनि जत लुकरक नन जत फासिंतै जेसेक मानसाक जबावै दंनाय अब खा बायफानो ओंथों एबा रां पैसा बाय फानफानो ओंथों जत पजा जोंन हरनाय नों खारवै सिमि थोंदि तै भारतन फुनुगै रोदि भारतनि लुकरक ब खासिगि मानो लुकरक आनो तै बुइनब साव भारतनि लुकरकनि साकमां अमाहाया जे बरक 10 सेकेन्डनि साय किसा जरानि स्प्रिन्ट खासिगि मानानो फिया ताबुक जों खरगनै फुनुगै रेखा भारतनि लुकरक ब

आं आईएस एएस हिनो तैबो खुर्साना मुसुंगो अबो कैसा स्टूडेंट लेट नेशन वाइड नेटवर्क बड़ो एस्ट्रोनॉमी ताय एस्ट्रोफिजिक्स क्लाब नि बिसिंगो मानजुओ किसिंग सॉन्ग बायथंगनी हॉबी नि बागे जरा तिखलायनानी ताय तामख्लाय के कताल सरंगै तंगनानी बेलायनो नांगो आं सिखला रखनो कयनानी मुसुंगो नरक जैसा एस्ट्रोनॉमी क्लाब बाय जैसा के फानो करंग दी ताय और लेंगलामानी जराव जैसा प्लेनेटरियम बोथांगै जैसा के फानो नायदि किचिंग सॉन्ग मन की बात पानानो जे बर रोग टीवी ओ नायो आं बरखनो सानाय कायसा भिडियो जैसा के फानो नायदि अ भिडियो नो तै थानाय साल रोग बेलाय खेनो सालाय जाखा आरो किसासो बरक बेलाय खालगै बेलाय कायसमै गंगानि मासा डल्फिनो मथांनानि साखथालायखा नरक अकक खनाय मलांसावानो आ साखथार मु दामचिथाम नांखा पायथागो अ डल्फिन थाबो थांखा किसिंसं आरो जतनि कतर याकतरमा ओंखा भारतनि पुइला गंगा डल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस नि अपातिमुंग उत्तर प्रदेश नि आरो मासा गंगा डल्फिन झाबराव कसाइतमनि अबति जराव खामा गंगा तांगबोथांनि बिसिंतै अ सनाम जाखमानि अ एम्बुलेंस नि बागै खाथारि जाखनाय ओङै कासाका उल बेलाय कायसमै बन अ कबुल जाखनि कारिखा बिनि साग आमजों नायजाखा बिनि साग आमजों नायमानि यागुल बन तैलाम कहाम फियोगै रहरखा बाबासा तै नायख्यांके कायसा लांगमा तेहैसा बिनि नग किफि मांखा किसिं सं अ डल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बेलायखेन नांगमानि अमो ओंखा हिमि तंनाय कायसा हस्पिटाल एबा साखाम नग हायखे सोनामजाक अर अ डल्फिन न जायखे तनमाना तैखे सोनामजाक अक्सिजेन नि सेब बतंग काहाम स्ट्रेचार बतंग नायकानि खलायजाखनाय मानै रग बतंग तुमुं डल्फिन रग दुखुमानखे किनार फायो एबा मुंसासुक थायो गोसाउि तंखे बरखनो लगि लगि न सबाय मानो किसिं सं जों जेफ्रो गंगा डल्फिन न मथांग आफ्रो जों कायसा मालमतानो सिमि मथांया जों गंगानि गोबां मा मालमातानोबो मोथांमा खालायो दैमानि बेबाग लांमानि सिस्टेमनो मोथांमा खालायो तै फायनाय कोताल आसाय संनि बागै काहाम तंखर सोनामै दङ आनि खाफांनि हाक्तनि लुकुराव नरकनि बिसिंग दैमा पुखिरि हायाखेबा कवा रग बाय गोरोंजा गोबां मा मैत्र रग तंना बाक्सानि पुखिरिव तै यकमानि मैत्र तंना बाक्सानि बा पुखिरि किनार बायाब रग बाय कथालायमानि हिमलायमानि कक्न मैत तंना बाक्सा बा आहानि बाहायनो मैत तंना चेरायफोरनि अमहाय कक रग बोखाव मैत ओङैनो तंफ्लायो किसिं सं अमहाय मैतनि कक रग्न गोथां तना बागै खा बासानाय खरक्सा उत्तर प्रदेशनि बस्ति मेलानि सोखांनि फायख्या बस्तिनि आकाश गुप्ता बायथांनि कामिनि दैमानुगै बेलाय खा दुख नांजाग तंमानि तामनि हिंखे जे दैमा ब चेरायफ्रु साफसुथ्रा ते गोथार नुखमानि जराबाय बाक्सा आ दैमाव प्लास्टिक जमखा हामिया सित्रा मानै बांग्रोगै तंमानि बरम गोनां आकाश खाव चङै नाखा कमप्लेन खालाया कायसा कोताल सामुं चेंनाय कमप्लेन या चेंमुंनि मन्त्र से ख्लायसो ब बिनि पाल रक्न लगि तैखा जाल तंग तै लगिव उरासिमिनो तंग तै तंग खाव फान कतर स्लाइमानि वानसुमुं असिखला रक तैमाव अंखलायै तै तैनि हामिया मानै रक्न तिसालायो तैनि प्लास्टिक रक तिसालायो सालब्रुमन बाची निसिमी दक्षि किलोमिटार

0: आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज अ रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। He received his initial training under Sri G. Venkatramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग बृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashvani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Akashvani Agartala. Akashvani Agartala janiyechi amader agami kalker onushtan suchi। সকাল 6:10 সুভাষিত অনুষ্ঠানে শুনবেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ। সকাল 6:15 ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান অঞ্জলি শুনবেন বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। সকাল 6:25 কাকবুরুক অনুষ্ঠান হায়ুমনি খড়াং। সকাল 7:05 রবিকিরণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন শিল্পী সুমিত্রা সেন। সকাল 7:35 স্থানীয় বাংলা সংবাদ। সকাল 7:40 কাকবুরুক সংবাদ। সকাল 7:45